धारा तर शुरू हो गया। चल अच्छी बात है, मैं ये सोच रहा था कि काफी अरसे से कि प्रैक्टिकली हम बस साथियों ने भी ये कहा था कि प्रैक्टिकल जो बातें होती तरह हम मजीद देखेंगे तो समझेंगे अच्छा है, तो इंशाल्लाह कोशिश अगले जुमे में भी चंद मसाइल जो इस तरीके से अमलन दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए ये सवाल है कि अगर जुराब पहन ली है, मसा भी कर लिया है, फिर उसे उतार दिया है, क्या वजू टूट जाता है? नहीं, वजू नहीं टूटता, आप वजू बरकरार है। इख्तलाफ उलमा का लेकिन जो सही कौल ये है कि अगर जुराब को आपने उतार दिया है तो आप वजू दुरुस्त है, वजू करने की दोबारा जरूरत नहीं है। नहीं पूरा नहीं, बाजू तक ऊपर नहीं है, बाजू तक नहीं है, तयम्मुम सिर्फ हथेली की हद तक है बस। हाथ पहले कौन सा धोते हैं? दाएं धोते हैं ना, तो बाएं दाएं पे फेरेंगे ऐसे ना, फिर बाएं दाएं पे फेरेंगे। गलती क्या होती है कि हम क्योंकि हाथ पहले दाएं धोते तो पहले दाएं बाएं पे फेर देते हैं, फिर अगर गलती से हो गए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये जो सही तरीका वो ये है। एहतजाज की दुआ की बात कर रहा था मैं कि हद से गुजर जाते हैं, उनकी एक सूरत, उसकी एक सूरत यह भी है कि बाज लोग लंबी लंबी दुआएं करते हैं, जैसे कि आज का रमजान है, रमजान के महीने में बाज लोग बहुत लंबी दुआ कर लेते हैं, यह खिलाफ सुन्नत है, सच बात है। और बाज लोग जहालत की वजह से इसे अच्छा समझते हैं कि फलान मस्जिद में फलान इमाम है कमर तोड़ देता है। अरे कमर तोड़ना कोई अच्छी बात है अल्लाह के बंदे, यार इतनी लंबी दुआ करवाता है मजा आ जाता है, अब और कमर टूटने में मजा आता है लोगों को, अजब सी बात है अल्लाह के बंदे। बाद ऐसे लोग हैं आधा घंटे तरावी पढ़नी है और 20 मिनट दुआ में, ये इंसाफ है? कहते हरम में भी लंबी दुआ करते हैं, हरम फिर एक तो 20 रकत पढ़ते हैं फिर लंबी पढ़ते हैं, डेढ़ घंटा दो घंटे नमाज पढ़ते रहते हैं आप, तो 20 मिनट में आधे घंटे नमाज खत्म करके 20 मिनट नमाज के बाद आप 20 मिनट दुआ मांगते हैं, ये इत्तेदा फिर दुआ में से। और फिर ऐसे अल्फाज कि उनके टैंक तबाह हो जाए, उनके जहाज गिर जाए, उनके खून रगों में रुक जाए, उनके पता नहीं जमीन पांव तले निकल जाए, ये इत्तेदा फिर दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ अल्लाह ताला से करते थे, दुश्मन आप सब जमाने में भी जिंदा थे, आप सब दुश्मन थे लेकिन कैसे दुआ करते थे, चंद अल्फाज थे एक दो जुमलों में। आज अजब सी बात है, जो इमाम ऐसी दुआ ना करे उसकी खैर ही नहीं। और दुआ कुनूत जो है याद, ये वाजिब नहीं है, इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूं बाज इमाम जो है बाज वक्त ना पढ़े पूरे रमजान में, यानी एक दिन दो दिन छोड़ तक, पता चले कि यह फर्ज नहीं है। बाज लोगों को यह मिसकंसेप्शन है कि यह जरूरी है, फर्ज इसके बगैर वितर होते नहीं है, और बगैर कुनूत के बगैर दुआ के नमाज नहीं होती। ये अल्लाह ताला का दीन है, इसे समझना जरूरी है, ये एहतदा फिर दुआ में से। और एहतदा फिर दुआ में से ज्यादती दुआ में बद दुआ करना किसी को बगैर वजह के, याद रखें ये बदतरीन दुआ, बदतरीन दुआ में से ये बद दुआ है कि एक शख्स हकदार नहीं है उस पर लानत भेजी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लानत जाती आसमान की, पहले से जाती उस शख्स की तरफ जिसकी तरफ भेजी गई, हकदार नहीं है जाती आसमान की तरफ, दरवाजे बंद आसमान के, फिर वापस उसी शख्स के ऊपर नाजिल होती है। और लानत का माना है अल्लाह ताला की रहमत से दूरी की बद दुआ, कि फलां शख्स तो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाए, दूर हो जाए। और अजब बात यह कि बाज माएं अपने बच्चों पर बददुआ करते हैं, वो बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते, और वो वालदेन भी जुल्म करते हैं जो अपने बच्चों पर लानत की बददुआ करते हैं। बाज लोगों की आदत है हर बात पे लानत है, यह ज्यादती है दुआ में। याद रखिए किसी को आपने गाली दी, किसी को बददुआ की और वो उसका हकदार नहीं है, वो तुम्हारे सर पे आएगी वापस। इसलिए पहले सोच लें जो आप जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो उसका हकदार है कि नहीं, अगर आपको नहीं पता तो ना करें। दुआ की कबूलियत आदाब में से दोनों हाथों को उठाना, यह भी आदाब में से है कि नबी करीम सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हई है करीम है, अल्लाह ताला को शर्म आती है कि कोई शख्स उसके सामने दोनों हाथ फैलाए
اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دیا.